0: पड़ो घरमै जुम्बे बहारा काची जाती है एक एक काती नासियो
1: साजन बिन्दसम सदा जो भाई मामरो नामधिकारायो स्वर्ण वज कविता प्रसन्न मनले संक्षेपी भारत विद्या

खाएगा परिवार अरे गाड़ी फुलारे चलो जगत माँ तेरो नाम ढोकरे झोकरे को हेरा यो तो पुत्र शुक्ले विराट को घर में यो बात पकाउने तेरो जेठाने वो तरुणी फकाउने बुद्धि तो छैन तेरा पाँच भाई को।

0: रेडियो स्थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज़
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान कर्ण समान दानमा तागत श्री बलराम कई सरी हो सदबात कई काम राजा धर्म कुमार कैसरी हो श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान हव शिशु जन्म मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल हो सुत सहित।

गाडेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।